0: पकटे दुख मिटे ते तराम नाम पकटे दुख मिटे ते तराम नाम भव समुद्र सुख जनाव के परम शांति सुख निजान दिव्य राम नाम
1: परम शांति सुख निजान
0: अत्त जन जीवन धन के राम नाम भक्त जन जीवन धन के राम नाम